0: थुरास
1: थुरास ए तरीका अहर में बहा सकाफता आदक आदाय के तेरेगा आद बावर घंत तक हुरे अडवहा लंबेनं ता
2: हाँ वारा पेनो
3: दिविराज का ना ट्यून कोला अंगार दोगे हावीर फाहिज जहर बुरास दोगे हावीर हाथरोगड़ फनराग आदि आदित दोगे हावीर फाहिज जहर हमें कनी दिविराज के आड़ो

0: ड्राइवर क्या रस हादरी चेतो को दे
1: बंद किया है रस हा ही क्या
2: अड़ुगंड के नमर की आयशत अनम अहमद अड़ुगंड उलेनी शहीद अली स्कूल के ग्रेड अशक का मैं दारुगंड किया दे मरनी वर रीति पंजे आम को बस अदबे मुबारक होगा मेरे को तब बंद किया ओले

0: हांगार अंगार दो मेंदुन कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूँ
1: हांगार
2: हम एकनी दिवे राज्य के अड़ू
3: अंगादी उंगन्नादी मुनिफोई फिलवा दिनु मुगा
4: थेदु वेरी कमाए को
3: एकु वेरी कमाए को
4: एरु वेस मिहारु वेस रायतुन्नायकु रायतुन्ना एम मेगातुगा दिवेहराच्चे के अडु
3: एंहा सतरस्ते का साली स्नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड